मिल संगत गुण प्रकाश जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन।

हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सगल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेवगुण सुख दियो, सत्रण को पल मोह बद कियो, घट घट के

कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब दुखर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख कर तो हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन सृष्ट सब तार है आप अपनी बूझ उचार है।

अंड जीरज सेतज किन्नी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट भयो संक्रिय कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट

भाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता, केल बिख सकल देहे को हरता, दुष्ट दुखिन कौशय करता, श्री

जल ही बिखे समाहे दोहरा, जब आए इस प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेपते सब हूं कहत सुनाए।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। राम दासै हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नाओ निध आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौं साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। जिना सिंह सिंगणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए कुपरियां लवाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आर्या नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं आ रहा सिखी केसा सुवासा संग निभाए तिना दी कमाई दा ध्यान दरके बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान दरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चित आवनगा सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत।

इतनी सेवा प्रवान करने जी कीर्तन करते हैं पहला दिन माफी बख्शन भाई कुलदीप सिंह जी दमन में टकसाल वाले आप जी ने पित्र बाणी कथा राही जोड़नगे उन्होंने पासों प्यार से सरन करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जियड़े जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचे हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो नवे शिद्र सर्व है अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सुप्रसन्न होवे मेरा स्वामी हर सिमरत मल लह जावे जियो माया मोह बिखम है भारी क्यों तरिए दुत्तर संसारी सतगुर बोहित दे प्रभ साचा जप हर हर पार लंघावे जियो तू सर्वत्र तेरा सब कोई जो तू करे सोई प्रभ होई जन नानक गुण गावे बेचारा हर पावे हर थाए पावे जियो तू सर्वत्र तेरा सब कोई

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

तब सिमरो जास भी संपर एक नाम जपते अगंते अनेक वेद प्राण सिमरत सोदाख्यर किन्ने राम नाम एक आख्यर किनका एक जेह जीव सावै ताकि महिमा गणी न आवै काखी एक दर्श तुहारो नानकुन संग मोहे उधारो।

उपाय। हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच अहंकुंड जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन में आप ने अंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन।

जाति पिहित मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उदरे पदद बहमूच बहुत सियाण जम का पहो ब्यापे अनक जतन कार्य त्रिसन्ना तरह पेख अनेक अगन नहीं भूजय कोड़ उपाव दर्ग नहीं सिजय

ही स्वरूप अंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तुहां उस गवन करतार करना में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरै सांग सहाय सो आवे।

जेह प्रसाद रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावे नानक पद से ती घर जावे। जेह प्रसाद आरोग कंचन देही लेव लाभ तिस राम स्नेही। जेह प्रसाद तेरा उला रहत मान सुख पावे हर हर जस कहत। जेह प्रसाद तेरे सगल सिद्र ठाकै मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जेह प्रसाद तेरे को ना पहुचै मन सा सा सिमरहो प्रभु चे। जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे। जेह

अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी सुमाह, ब्रह्म ज्ञानी पारोपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के हो सफला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला,

निरंजन दर्श पारत रूप ना पेख नेत्र साध की टहल संत संग हित करना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आवश्यक मंदा गुर प्रसाद।

दुख न करहै। कई कोट माया श्रम माह, कई कोट प्रदेश प्रमाह, जित जित लावो तित तित लगना नान, करते की जान है करता रत्न, कई कोड सिद्ध जती जोगी, कई कोड राज रस भोगी, कई कोट पंखी सर पे उपाय, कई कोट पाथ वृख निवजाय, कई कोट पवन पानी बसंतर, कई कोट देश पुह मंडल, कई कोट शशि हर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दान इंद्र सर छत्र, सगल समग्री अपने सूत तार है, नानक जिस जिस पाव तिस निस्तार है।

कई कोड़ पाताल के वासी, कई कोड़ नरक सुर्ग निवासी, कई कोड़ जन्म ही जीवे मरे, कई कोड़ बोझो नहीं फिर है, कई कोड़ भैठ से ही खाए, कई कोड़ काले थक पाहे, कई कोड़ किए तनवंत, कई कोड़ माया मह चिंत, जह जय पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभु के हाथे, कई कोड़ पह बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोड़ प्रभु को खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,

सृजन सिमर हर हर राय एक आस हर मन रख हो नानक दुख परम पव जाय अस्तपदी मानो की टेक वृथि सब जान देवन कौ एक भगवान।

पियो। चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी काहे आधार उत्तम।

असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख

अंतरगा तीर्थ मल्लाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोहे, विण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्ताद बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कमण सो वेला भगत कमण,

उदार मनगन प्रणाम निर्भय निगाम अद्भुत प्रचंडगत अखंड आलस्य कर्मा दृश्य धर्म सर्वापरनाड्य अंडंड बाड्या चाचरी शांद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरिंद्र नामे अकामे भुजंग प्रयाद छंद चतुर्चक्र कर्ता चतुर्चक्र हर्ता चतुर्चक्र दाने चतुर्चक्र जाने चतुर्चक्र भर्ती चतुर्चक्र भर्ती चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र गाले चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासे चतुर्चक्र माने चतुर्चक्र दाने चाचरी छंद न सत्तरे न मित्र न परम न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्र परे है पवित्र प्रतिश दिश अदृश अकृश भगवती शांत त्व प्रसाद कथते कि आ शुज देश के आ पिज बेस के आ गंज कर्म के आ पंच भरम के आ पिज लोके के आ दित सोके के भूत वरण के विभूत करण के राजम प्रवाह के धर्मंग तुझा है के आ शोक वरण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चतरंग विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही मेरे हाक है के पाग व्याव के गैबल गैब के अफुल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण गुरिंद के रोजी दहान के राज के रहीम के कर्मंग करीम के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र भावन है के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र बेसा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र बेसा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाला है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्या है के सर्वत्र थाप्या है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वंग कलीम है के परमंग भीम है के आपक आकल अलामे के साहिब कलाम है क्यूसनल वजू है तमामल रजू है मेसुल सलाम है सलीखुत मुदाम है गनीमल शिकस्त है गरीबल प्रस्ता है बिलंदल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रजुल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग भेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमल खराज है नृग स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनुभ है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समसुल सलाम है सदैव काम दरभा स्वरूप अगाध है अनुभ है ओंगाध रूपे ना स्वरूप अनंगी नामे त्रभंगी त्रकाम त्रिभर्गम द्रवादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुग स्वरूप अशुज अशुद है के नरकम प्रणास है प्रतुल प्रवास है नृक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुग स्वरूप प्रजुक्त अनुभ है नृक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुग स्वरूप प्रजुक्त अनुभ चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजा है अभय है अभूत है अथूत है।

आने चाहने का अंदर आने बाद अंदर टूट पड़ा आरं ठट बार आठ हीट सर्म आठ हीट कर्म आने बरान आनंद दाता महान्धर बोल मना शांत त्वा प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलकंडल है बह मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रितके तरण है जके कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्पास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजप अजप थपा थप कर्ता कर्ता मृता मृता मृता मृता करुणा करता कर्ता कर्ता तरने तृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है कर्ता कर्ता मृता मृत है अजवा कर्ता अमृत अमृत है नरनायक है कलगायक है विश्वंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पपंजन है अर्गंजन है रपतापन है जप जापन है अकलांकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जसके जस है भुजंग प्रयाद छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग सांत रूपे नमो परम तत्ंग त्वतंग सुरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो बान बाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो भाग भंगे अभंगी सुरूपे अनंगी अनामे त्रभंगी त्रगाले अनंगी अगामे एक अश्री शांत अजय अलाय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगह अटा अनाथे परमाते अजोनी अमोनी नराग नरंग नरूप नरेख अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयाद छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निर्गामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासे सुतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय विघनी में हरियं करियं करीमल रही में चतुर चक्र भरती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव स्वंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग वर्णासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते चतुर चक्र भरती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव स्वंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग वर्णासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वाशय दसवीं त्वा प्रसाद सवैये सरावग शुद्ध समूह सिद्धान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधातिक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत को ना देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रतीबन एक रती बिके श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रती बिन एक रती के माते मतंग जरे जर संग मनोप अतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप लिबित ने आपसी सना जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूप तंद कौ नागे पाए पधारे जीत फराय सब देश दिशान को बाज ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंस ही है राज हजारे भूत भिग भवान के भुपत कौन गै नह जात बिचारे श्री बस श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नहन दयादम दान सुसंजम नेम अनेक विसेखा वेद प्राण कदेव करान जमीन जमान सवान के पेखा पावन आहार जति जतार सब सुचार हजार क देखा श्री भगवान भजे बिन भुपत एक रती बिन एक न लेखा शुद्ध सिपाह दुरंत बास सासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख लेना हलेंगे तोर अरीर मरोर मुवासन माते मदंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा त्याग जहान निधान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार बचारे सार की धार बछैया तोर देश मिलिंद मुवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सुबातन चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सोएक दवैया दानव देव नंद साचर भूत भगवान जपेंगे जीव जिते जालमय थालमय फल ही पालमय सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैतुन पापन के बह पुंज खपेंगे साध सुम प्रसन्न फ्रैचक सत्र सभ अवलोक छपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नाथ बजोन त्रिलोक राज करेंगे कोट स्नान के जातक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्मेश्वर विष्णु सचिव

ध्यान लगायो। नहत प्रियोलियसा समंद्रन लोग प्ररोग गवायो, बास क्यों बिख्या उसको बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साज कहूँ सुन ले हो सबैजन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, काहू ले पाहन पूज तरव सिर काहू ले लिंगर लटकायो, काहू लख रवाची दिशा में कहू पशाह कहू शीस निभायो। कहू बतान काओ पूजत है पास, कहू मृतान काओ पूजन धायो, कूर क्रिया उर जाओ सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो। कहू बतान को पूजत है पास, कहू मृतान काओ पूजन धायो, कूर क्रिया उर जाओ सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपाई, अमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो व्रत बारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबो, आप हाथ दे मोहे बचाबो, सुखी बसे मोर परवारा, सेवक सिख सबाए करतारा, मोर अच्छा निज करता है करें, सब बैरन को आसंग रहे, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा।

कृपा दृष्टन जाय ने हर हो ताके ताब तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शबाय सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा।

अपने आप साजियो आप ही ने रचियो नाओ तो ही पुत्र साजिए कर आसन डठो जाओ दाता करता है आप तू तुझ दे वह करे पसाओ तू जानो ही सब सह दे लैसे जिंद कवाओ कर आसन डठो जाओ कर आसन डठो।

है। कर्तृ शब्द सूर शब्द सूद शब्द प्राकृत है। सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पेउ नानता का दास है। सोई निरंजन देव महला दूजा ए कृष्ण सर्व देवा देव देवात आत्मा आत्मा वास देव जे को जाने पेउ नानता का दास है। सोई निरंजन देव महला पहला।

0: सच पाइए पौड़ी जितेंद्र सब को
1: देख नजरी हेठ चलाएगा आपे दे वड़े आई आपे ही कर्म कराएगा वडो वड़ा वड़ मेजरी सिरे सिर

0: सूत क्यों कर रखी है सुत मुड़ सोए नानक सूत के बिना उतरे ज्ञान उतारे तो ही भला पहरा
1: मन का सूत लोभ है जेवा सूत कूर बाकी सूत वेखना पर त्रै पर तन कनी सूत कन बे लाए।

0: न जीवन मल न जोर
1: जोर
0: न सुरती ज्ञान विचार जिस हाथ जोर कर वेख्या सोए राति रुति थिति वार
1: पानी अग्नि पाताल
0: जिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल इनके नाम अनेक अनंत
1: करमी करमी होए विचार
0: सच्चा आप सच्चा दरबार
1: तिथे सोहन पंच परवार
0: नगरी कर्म पवै निशान नानक गया जापै जाए ज्ञान खंड का आखो कर्म
2: किते
0: पवन पानी बसंतर किते खान महेश रूप रंग के वेश
2: कर्म भूमि मेल किते धूप देश
0: किते इंद चंद सूर किते मंगल देश
2: किते सिद्ध बुद्ध नाथ किते देवी वेश
0: किते देव दानव मुन किते रतन समुंद
2: किते खानी किते बाणी किते पाच इंद
0: किते सुती सेवक किते नानक अंत न अंत
2: ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड
0: किते नाद विनोद कौर आनंद कार्त करिए बहुत अनूप
2: पछताए
0: राम रहा भरपूर ताके रूप न कथने
2: जाए
0: जिनके राम से मन माए करे आनंद सचा मन सोए कर कर वेखे नर निहाल जे को कथै ता अंत न अंत
1: लो लो आकार
0: जीव जीव हुकम तवै त्योकार
2: विखे विखे कर विचार
0: नानक कथना करड़ा सार
2: जत पहारा तीर्थ न्यार
0: पहरण मत वेद हथियार
2: कला कर्म तपताओ
0: पांडा पाव अमृत तित
2: ढाल करिए शब्द सचित सार
0: जिनको नदर करम तिनकार
2: नानक नदर नदर

0: अजनबूज है, असूज है, अकाल है, अजार है,
1: अजार है,
0: लीक है, मिस लीक है, निलंब है, असंब है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है,
2: जीत है, पीत है, बा है, गा है,
0: अमान है, निदान है, अनेक है, प्रेक है, पजंग प्रयाग चांद नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने
1: नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे
0: नमो काल काले नमो सर्व पाले
1: नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे
0: अनंगी अनाथ निसंगी परमात्थ

0: नमो दान दाने नमो मान माने
1: नमो रोग रोगे नमस्तमि स्नानं
0: नमो मंत्र मंत्रं नमो जत जंत्रं
1: नमो इष्टिष्टे नमो तंत्र तंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं परनाशी
1: रूपे रूपे स्मरसो निवासी
0: सदा सिद्धा बोधदा वृद्धकर्ता
1: अदो अर्धं अर्धं ओघहर्ता
0: परम परम परमेश्वर।

0: तेज है
1: प्रजंग प्रयाचांत अगाध्य अबाध्य नंदी स्वरूप है
0: सर्वमान्य समस्ती निदाने
1: मस्तंग नाथे नमस्तंग परमाथे
0: नमस्तंग गंजे नमस्तंग अपंजे
1: नमस्तंग अकाले नमस्तंग

0: राजा का रहीम है कि कर्मं करीम है,
1: कि सर्वं कले है, कि सर्वं दले है,
0: कि सर्वतन्मान्य है, कि सर्वत्रदान्य है,
1: कि सर्वत्रकौन है, कि सर्वत्रपावन है,
0: कि सर्वत्रदेश है, कि सर्वत्रदीन है, कि सर्वत्रलीन है,
1: कि सर्वत्रजाव, कि सर्वत्रदेश है, कि सर्वत्रपेश है,
0: कि सर्वत्रराज्य है, कि सर्वत्रसाज है,
1: कि सर्वत्रदीन है, कि सर्वत्रलीन है, कि
0: सर्वत्रजाव, कि सर्वत्रपाव,
1: कि सर्वत्रदेश है, कि सर्वत्रवेश है,
0: कि सर्वत्रकाल है, कि सर्वत्रपाल है,
1: कि सर्वत्रहंता, कि सर्वत्रगंता,
0: कि सर्वत्रपेखी, कि सर्वत्रपेखी,
1: कि सर्वत्रकार्य, कि सर्वत्रराज्य,
0: कि सर्वत्रशोक है, कि सर्वत्रपोक है,
1: कि सर्वत्रत्राण है, कि सर्वत्रप्राण है,
0: कि सर्वत्रदेश है, कि सर्वत्रपेश है,
1: कि सर्वत्रमान्य है, सदैव प्रधान्य है,
0: कि सर्वत्रजाप्य है, कि सर्वत्रथाप्य,
1: कि सर्वत्रपान है।

0: कृपा करी हम पर जग माता
1: ग्रंथ करा पूरन सब राता
0: सकल दे गोहरता
1: दश अज्ञान कोशय करता
0: श्री यसु जो पय दयाला
1: पूरन करा ग्रंथ तत्काला।

0: रामकली मोहल्ला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
1: सतगुरता पाया सहज सती मन बजिया वधाइया
0: राग रतन परिवार परिया शब्द कावड़िया
1: शब्दोता गावो हरे के रामान जनी वसाया
0: कह नानक आनंद वस

0: एक टांब तुझे देख दस चले नाही तेरा नाले
1: साथ तेरे चले नाही दस नाल क्यों जित लाया
0: ऐसा कम मूले न कीजे जितंत पछोताई है
1: सतगुरु का उपदेश सुनो तो होवे तेरे नाले
0: कह अकबाल प्याय तो सदा सच संभाले
1: अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया
0: किने तेरा अपना आप तू जाने
1: जीव जंत सब खेल तेरा क्या को आख बखाने
0: आखे ते वेखे सब तू है जिन जग तो पाया
1: कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया
0: सुर नर मन जाने अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया
1: पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया
0: जन सब तुरियो पाए वेग परशन आया
1: लाभ लोभ अहंकार चुका सतगुर पला पाया
0: कह नानक जिसनो आप अमृत वरते पाया
1: भक्ता की चाल नराली चाला नराली भक्ता के बेखम मार्ग चलना
0: लाभ लोभ अहंकार तत् तृष्णा बोत नाही बोलना खत्ती वालो निकी एत मार्ग जानक

जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारू नानक आप बेख हर भिक्ष गुरमुख ब्रह्म विचारू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।